दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4।

0: तो हम तेरे हैं की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 तांकीन नशरिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांक की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ।

0: You are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Amon 88.4.
0: You are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।

0: तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the student listeners of Global FM 91 Dehan, Radio Pegham 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Dhaka. जी जनाब, तीन स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है कैसे नजर पाकिस्तान की, ये आवाज है खूबसूरती की, ये आवाज है सेहत की, ये आवाज है शिफा की। जी जनाब, हर रोज की तरह आज भी दोपहर की 4 बज चुके हैं और जनाब 4 बजते ही ये आवाज आपको सुनाई देती है, जो कि है खलील दावे जमान की आवाज। आप लोगों के साथ मौजूद है तो जनाब डेर इस्माइल खान पहाड़पुर और टांग के अंदर सुनने वाले तमाम गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटीज, चाचा एंड चाची, मामा एंड मामीज, दादा एंड दादीज एंड नाना एंड नानीज, ऑफ कोर्स सभी सुनने वालों की जनाब खलील ताबे शाहवान का सलाम, ढेर सारी मोहब्बतें, ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी नेक तमन्नाएं आप तमाम लिसनर्स के नाम। जी तो जनाब कैसे हैं आप सभी लोग? जनाब हमेशा की तरह आज भी मैं यही गुमान करूंगा, यही दुआ करूंगा कि जिस तरह मैं बिल्कुल जी फाइन एंड शाइन हूँ, चमकता हुआ, धमकता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ, चहचहाता हुआ, आपकी समातों की नजर आपके रेडियो स्टेशन, आपके शहर के रेडियो स्टेशन के ऊपर जनाब फ्रीक्वेंसी के थ्रू बराजमान हो चुका हूँ, आपके कानों तक पहुंच चुका हूँ बिल्कुल जी खैरियत के साथ, अफियत के साथ। मेरे तमाम चाहने वाले बिल्कुल जी इसी तरह ठीक ठाक, फिट फाट, एकदम मजे में, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, चहचहाते हुए जनाब अपने इस वक्त में रेडियो को सुन रहे होंगे। और जनाब ये है का टी टाइम शो।
1: दुश्मन को नवाजा है
0: तो जनाब ये खुशकिस्मती है हमारी भी और आप लोगों के भी कि जनाब ये वो वाहिद टाइम होता है कि जिसमें आप प्रोग्राम को सरूर के साथ, मोहब्बत के साथ, सुकून के साथ, लुत्फ के साथ, मजे के साथ एंजॉय करते हैं, क्योंकि जनाब ये टी टाइम होता है और टी टाइम बोले तो यानी कि चाय का वक्त होता है ये, और ये वक्त होता है फिर से बेदार होने का, फिर से उठने का, और वो जो आप 6-7 घंटे काम कर चुके थे बीच में आपने कर लिया है कैलूला, ठीक है जनाब, और कैलूला करने के बाद, अच्छा जी ये जो कैलूले का लफ्ज है ना, ये आम लोगों को शायद समझ ना आ रहा हो, लेकिन ये जब आप दिन का खाना खाते हैं और उसके बाद ये सुन्नत अमल है, ठीक है जनाब, के खाना खाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं, और आप यकीन करेंगे कि ये सुन्नत अमल है, लेकिन इसको किसने अपनाया हुआ है, इसको कानून बना दिया है एक मुल्क ने, ठीक है जनाब, इसको कानून बना दिया है चाइना ने कि जनाब दफातर के अंदर जहां पर भी हैं खाने के बाद आधे से पौने घंटे की उनको रिलैक्सेशन की छुट्टी होती है, क्योंकि जनाब जब आप सुबह 8 बजे से या 9 बजे से काम के ऊपर शुरू होते हैं और 2 बजे तक काम करते हैं तो आपकी एनर्जी जो होती है ना वो बहुत सारी कंज्यूम हो चुकी होती है, यही वजह है कि आपको भूख भी लग रही होती है, पूरी की पूरी आप एनर्जी जाया कर चुके होते हैं, और उसके बाद जनाब जो है जब आप खाना खाते हैं, सैर होते हैं और थोड़ी देर के लिए कैलूला करते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए आंख लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए, चाहे वो 15 मिनट के लिए हो, 20 मिनट के लिए हो या फिर घंटे के लिए हो, जनाब वो आपको फिर से एनर्जेटिक कर देती है। ये सुन्नत अमल है प्यारे नबीर का, तो वैसे तो मुसलमान हमें भी करना चाहिए, गर्मियों में तो बहुत सारे लोग जो इसको इस सुन्नत को अपनाते हैं, और वो मैं यही बात कर रहा हूँ कि इस वक्त ये जो सोने का वक्त होता है उसके बाद जो सबसे पहली चीज जो जरूरी होती है वो आजकल दो हो गई है, पहले तो चाय होती थी, लेकिन अभी जो है वो जागने के साथ एक और चीज जरूरी हो गई है, वो है केसन का प्रोग्राम। तो जनाब आपकी ढेर सारी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया कि जितनी मोहब्बत से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, और आप भी सोच रहे होंगे जी कैसे पता चलता है केसन वालों को कि हम आपका शो प्रोग्राम मोहब्बत से सुन रहे हैं, कि जनाब वो आपका जो रिटर्न हमारी तरफ आता है ना सेल की सूरत में, और हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कॉल करके हर रोज कह रहे होते हैं भाई इतने कार्टन ये भिजवा दो, इतने कार्टन ये भिजवा दो, ये भिजवा दो, वहां से कॉल, जफराबाद से कॉल, चुंगी से कॉल, शेयूसफ से कॉल, टांग से कॉल, पहाड़पुर से कॉल, दोतर अड्डा से कॉल, चश्मा रोड से कॉल, यानी कि पूरे एरिया के अंदर जहां जहां हमारी ट्रांसमिशन चल रही होती है वहां वहां से जो है वो हमें हमारे लिए क्या होता है कि जनाब ऑर्डर जनरेट हो रहे होते हैं, तो ये मोहब्बत है जनाब। अगर आप प्यार से, मोहब्बत से हमारा प्रोग्राम ना सुनते तो फिर इतनी सारी सेल्स और ये रिटर्न हमारे पास कैसे आता? तो भाई हमें पता चल जाता है कि जब आप हमारे प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत दे रहे होते हैं तो वो सेल्स की सूरत में, हमारे साथ डिमांड की सूरत में वापस आ रही होती है। तो जनाब चाहे इस वक्त जरूर पिया कीजिए, हाँ जी जरूर पिया कीजिए, वो एक शेर है ना कि जनाब, वो एक शेर है कि आओ मिल के चाय पीते हैं, जी जनाब, और चाय भी वो फिर अंकल असद बोलेंगे कि आप ऐसी बातें करते हैं कि हमारे मुंह में पानी आ जाता है। चाय भी मलाई वाली और सब्ज इलायची वाली। वो कहते हैं कि आओ मिल के चाय पीते हैं, खुशियां तो हमारी लोग खा गए हैं।

जनाब, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप हमारा नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे या फिर कागज के एक टुकड़े के ऊपर हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर को अपने पास लिख लेंगे। तो हर रोज आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी, कागज पे लिखा हुआ या फिर मोबाइल के अंदर सेव किया हुआ नंबर आप लोग रोज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा इस टी टाइम में आकर अपनी शिरकत को यकीनी बनाकर हमें बताएंगे कि खलील भाई एक साथ तीनों स्टेशन पर मौजूद हैं तो हम भी आपके साथ मौजूद हैं। तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइएगा हमें हमारे नंबर 03444-9336-336-0344-936-3366 या फिर 03137-98-4545-54।

0: जनाब, कैसे नजर पाकिस्तान का ये टी टाइम और आप लोगों के लिए जो है हर रोज एक कहानी होती है और ये कहानी बेसिकली जो है खूबसूरती की कहानी होती है। शाहजहान चिश्ती जो है पहाड़पुर से हमें इस वक्त जो है कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर मैंने आपकी कॉल ले ली तो फिर लोग बोलेंगे कि हमारी भी कॉल लीजिए, क्यों भी शाहजहान आपके फुप्पो के बेटे हैं जी, फिर तो हमें ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं ना भाई, फलाम बंदा फलाम बंदी आपकी फुप्पो की बेटी है, फुप्पो का बेटा है। हैं जनाब, तो फुप्पो की बेटी कोई नहीं है, फुप्पो का बेटा कोई नहीं है भाई। तो आप अपने वक्त के ऊपर अगर आप आएंगे ना तो फिर बड़ा मजा आएगा, जब थोड़ी बहुत मेरी बात सुन लेंगे भाई। ये जो केसन की कहानी होती है खूबसूरती की कहानी है और हर रोज हम आपको बताते हैं जी ये खुद को प्यारा कैसे बना सकते हैं, और प्यारा बनने के लिए एक चीज जरूरी है और वो खर्चा जरूरी है जनाब। ठीक है जनाब, जो लोग कंजूस होते हैं ना वो कभी भी प्यारे नहीं होते, यकीन कीजिए। कंजूस बंदा ना ही कपड़े सोने पहनेगा, ना ही जुत्ती सही पहनेगा, ना ही जनाब अपने ऊपर खर्चा करेगा, उसको क्या जरूरत है, वो कहेगा जरा बस आम सा साबुन है मैं उससे चेहरा धो लूं, उसे क्या जरूरत है कि एक अच्छे फेस वॉश का इस्तेमाल करे, क्योंकि उसके तो पैसे लगने हैं ना। कंजूस बंदा तो सोच रहा होता है कि भाई कैसे हैं जी, कैसे पैसे बच जाएं, कोई जुगाड़ लग जाए ना कि जनाब वो काम भी हो जाए और जो जुगाड़ भी लग जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये दुनिया का कानून है कि जहां कहीं आप पैसे बचाते हैं ना आप अपनी इज्जत वहां गंवाते हैं। यकीन कि अगर इस जुमले को आप याद रखेंगे ना, जहां पर भी आपका दिमाग ये कहे ना कि यहां पर पैसे बचा लो, आंखें बंद कर लो, कबूतर की तरफ बंद मत कीजिएगा वहां पर, नहीं तो आपकी इंसल्ट हो जानी है। लोगों को समझ आ जाती है कि इस बंदे ने कंजूसी की है, लोगों को समझ आ जाती है कि यार इस बंदे ने पैसे बचाए हैं, इसको पैसे प्यारे हैं। ठीक है, और जब ये बात आती है तो बंदे के अंदर अगले बंदे का लेवल वो नहीं रहता है कि यार ये पैसों को इतना साम साम के रखने वाला बंदा है, यानी कि ये लगाने वाला बंदा नहीं है बिल्कुल। तो भाई खूबसूरती के लिए तो एक चीज मस्त है कि खर्चा आपको करना पड़ेगा और कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे। ठीक है जनाब, और जितना गुड़ उतना मीठा। केसर ने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, केसर नेचुरल पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं ब्यूटी के लिए। क्रीम की सूरत में जाएं तो 4 किस्म की क्रीम है, साबुन की तरफ जाएं तो हमारे 7 किस्म के सोप हैं, और अगर फेस वॉश की तरफ आएं,
1: हर पल
0: फेस वॉशेस की तरफ अगर आप आएं तो जनाब हमारे जो है 4 किस्म के फेस वॉश हैं। ठीक है जनाब, और ये बेसिकली मैं उन लोगों को कहूंगा भाई जो स्किन की एक्स्ट्रा केयर करते हैं। ठीक है जनाब, एक्स्ट्रा केयर करते हैं और वो ये चाहते हैं कि भाई कुछ नया उनकी स्किन के ऊपर नजर आए, कुछ पहले से बढ़कर रिजल्ट मिले, तो भाई वो केसन के फोमिंग फेस वॉशेस जो इस वक्त क्रीमी टेक्सचर के साथ फोमिंग क्वालिटीज के साथ मौजूद हैं उनका इंतखाब कीजिए और गर्मियों के अंदर फेस वॉशेस का इस्तेमाल कीजिए। एक वैसे तो हमारे 4 फेस वॉश हैं, ठीक है जनाब, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिनकी डिमांड होती है, जो हर वक्त हमारे पास शॉर्ट रहते हैं, जो हर दुकानदार, आज मैं उन दुकानदारों के नाम बताऊंगा और उन इलाके के जरूरी बात है वो दुकानदार जहां पर मौजूद हैं, तो शुक्रिया उन लोगों का, उन इलाके की मेरी बहनों का और मेरे भाइयों का कि ये हमारे सेल पॉइंट जहां पर मौजूद हैं और यहां पर हमारे फेस वॉश कितनी बड़ी तादाद में बिकते हैं। ठीक है जनाब, और स्पेशली 2 फेस वॉश हमारे ग्लूटा, चूंकि अभी न्यूली आया है तो उसकी थोड़ी सी कीमत भी ज्यादा है, 50 रुपए ज्यादा है, तो लोग 20-30 रुपए को भी देख रहे होते हैं। तो लेकिन जो हमारे 2 स्टार्ट के फेस वॉश हैं, जैसे कि टी ट्री का फेस वॉश गो पिंपल के नाम से और प्योर वाइटनिंग का फेस वॉश लवली फेस वॉश के नाम से, ये दोनों टॉप के ऊपर हैं केसन के फेस वॉश।

0: बाल काटा
1: जी जनाब, व्हाइटनिंग की अगर आप शौकीन हैं जनाब, तो प्योर व्हाइटनिंग, एक व्हाइटनिंग होती है, एक दूध होता है, एक प्योर दूध होता है, ठीक है जनाब। एक व्हाइटनिंग होती है, एक प्योर व्हाइटनिंग होती है, ठीक है जनाब। तो केसन का ये जो फेस वॉश है, जिसको हम इंस्टेंट प्योर व्हाइटनिंग के लिए यूज करवाते हैं, लवली फेस वॉश इसका नाम है। लवली के नाम से लोग इसको जानते हैं, पिंक एंड गोल्डन कलर की इसकी जो है कलर स्कीम है, बहुत प्यारा फेस वॉश है। और दाग धब्बों को खत्म करने वाला ये फेस वॉश है। अगर आपके चेहरे के ऊपर धब्बे हैं, दाग धब्बे हैं, वैसे तो बेसिकली फेस वॉशेस को जब यूज किया जाता है तो उनका मकसद क्लींजिंग और फ्रेशनेस होती है, ठीक है जनाब। क्लींजिंग और फ्रेशनेस होती है, स्किन को बहुत अच्छे तरीके से साफ करना, और उसके बाद जो है आपकी स्किन को डलनेस से निकाल कर, यानी कि मुर्दा जान के अंदर विटामिन के थ्रू ये जान डालते हैं। तो जनाब केसन प्योर लवली फेस वॉश का इस्तेमाल आपको कुछ ही दिनों के अंदर अपनी औकात बताएगा कि जनाब जब आप इसको रोजमर्रा जिंदगी में 2 दफा इसका इस्तेमाल करेंगे, तो इसके जो इंग्रेडिएंट हैं, डीप क्लींजिंग पोर्स की करता है, ठीक है जनाब। ब्राइटनेस को बढ़ाता है, इवन स्किन को इवन टोन करता है, डार्क स्पॉट दाग धब्बों को खत्म करेगा, और नेचुरल जो ग्लो है ना वो आपकी स्किन के ऊपर नजर आएगा। वैसे इसे मर्द भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये स्पेशल फार्मूला है फॉर वुमेन, ठीक है जनाब। दिस इज वेरी स्पेशल फार्मूला फॉर फेयरनेस एंड वाइटनिंग ओनली फॉर गर्ल्स, ठीक है जनाब। ये हमने फार्मूला बनाया है, और मेरे ख्याल में इंडिया के बाद ये पाकिस्तान में पहला फेस वॉश है कि जिसको हम कहते हैं कि ये सिर्फ खवातीन के लिए है। स्किन, खवातीन की स्किन को बहुत ज्यादा ये सूट करता है, और जिन जिन लोगों ने इसको यूज किया होगा उन्हें पता चल गया होगा कि वाकई भाई ये केसन ने जो फार्मूला बनाया है सिर्फ खवातीन के लिए, केसन प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश वाकई, और इसके पीछे कहानी है। और बहुत दफे मैं बता चुका हूँ कि ये खास फार्मूला किस बिना पर हम इसको कहते हैं, और वो वजह इसका, इसके एक्सट्रैक्ट है जो कि स्पेशल एक्सट्रैक्ट इसके अंदर ऐड किए गए हैं, जो कि आपकी जो फीमेल स्किन के ऊपर, ठीक है जनाब, फीमेल स्किन के ऊपर एक खास किस्म की ग्लो लेके आते हैं, पिंकिश ग्लो जिसको हम कहते हैं। इसको यूज करेंगे तो आपका चेहरा पिंक पिंक सा लगना शुरू हो जाए।

जी जनाब, केसन का ये प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही प्यारा है। और सबसे ज्यादा बिकने वाला केसन का जो फेस वॉश है वो प्योर वाइटनिंग लवली फेस वॉश है। ठीक है जनाब, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जफराबाद में भाई जितनी बहनें हमारी रहती हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे जो है फेस वॉश, लवली फेस वॉश और साथ में, और मैं ये कहता हूँ कि जितना ताबेदार जो है ना जफराबाद के लोग है ना केसन के हवाले से, मैंने किसी और इलाके को नहीं देखा। ये आप सोच रहे होंगे कि भाई आपको कैसे पता चला कि इस इलाके के लिसनर आपके ताबेदार हैं। हमें ऐसे पता चलता है कि जो हम आपको स्किन केयर रूटीन बताते हैं ना कि भाई अब इसको फॉलो कीजिएगा, अब इसको फॉलो करें, तो जिस इलाके से हमें उसी स्किन केयर रूटीन के मुताबिक ऑर्डर आते हैं ना, यानी कि जैसे कि अब हम कह रहे हैं कि गर्मियों के अंदर भाई फेस वॉश का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, और सिर्फ फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं, साथ में आपने ब्यूटी स्प्रे भी इस्तेमाल करना है। जैसे फेस वॉश से चेहरा धो लें तो उसके बाद चेहरे को खुश्क करने के बाद, ठीक है जनाब, चेहरे को तौलिए से खुश्क करने के बाद आपने उसे खुश्क चेहरे के ऊपर केसन का ब्यूटी स्प्रे ऐसे स्प्रे करना है, ठीक है जनाब, फवारे की सूरत में। तो जैसे स्प्रे कर लेंगे तो वैसे आजकल हवा गर्मी है तो ये फौरन सूख ही जाता है, अगर नहीं तो फिर अपने हाथों की मदद से भी आप इसे अपने चेहरे के ऊपर जो है खुश्क कर सकते हैं। ठीक है, जो भी फेस वॉश आप इस्तेमाल करें, जिस भी साबुन को इस्तेमाल करें, उसके बाद स्प्रे का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये जो हमारा एरिया है ग्लोबल FM 91 को जो लोग सुनते हैं, और इसमें कौन सा इलाके हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं भाई इस हवाले से कि वो सिर्फ फेस वॉश नहीं खरीद रहे हैं, वो भाई की बात को मानते हुए कि भाई ये बात एमए नहीं करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखी कंपनी है, और इनको सब पता है कि भाई जो अच्छा होगा लिसनर्स के लिए ये वो ही बताएंगे। तो जफराबाद के लोग 100% जो है हमारे इस बात को मान रहे हैं, क्योंकि जो दुकानदार भी हमें ऑर्डर दे रहा है ना फेस वॉश का, तो उसके साथ ऑर्डर आता है कि भाई इतने ब्यूटी स्प्रे भी साथ में भिजवा दें। ठीक है जनाब, यानी कि उनको मुकम्मल तौर पर समझ आ गई कि सिर्फ फेस वॉश नहीं बल्कि उस खूबसूरती को 3 गुना ज्यादा करने के लिए, उस व्हाइटनिंग को 3 गुना बढ़ाने के लिए ब्यूटी स्प्रे भी हमने इस्तेमाल करना है। तो भाई जफराबाद के अंदर जो हाजी जनरल स्टोर है, बहुत बड़ा हमारा सेल पॉइंट है, वहां पर माशाल्लाह आप सब लोग ये दोनों चीजें खरीद रहे हैं। इसके अलावा अब्दुल रहमान जनरल स्टोर है जफराबाद में अल फैसल मार्केट में, आप भी वहां पर ये फेस वॉश और ब्यूटी स्प्रे एक साथ खरीद रहे हैं। और इसके अलावा फारूक जनरल स्टोर है तो वहां पर भी, तो इन लोगों का बेहद शुक्रिया। इसके अलावा डेरस मिल खान में और कौन ओबे कर रहा है हमारे इस स्किन केयर रूटीन को, बिल्कुल शेख यूसुफ चौक के ऊपर जो हमारे दो सेल पॉइंट है, जैसे की जाहिद शॉपिंग सेंटर है और साथ में है जनाब उमर जनरल स्टोर मजार वाली गली में। तो ये दोनों यहाँ से जब भी ऑर्डर आते हैं हमें गो पिंपल फेस वॉश या लवली फेस वॉश का, तो साथ में ब्यूटी स्प्रे का भी ऑर्डर आता है कि इतने ही ब्यूटी स्प्रे साथ में भिजवाएं। तो भाई इन लोगों का भी बेहद शुक्रिया जो यहाँ पर हमारी स्किन केयर रूटीन को मुकम्मल तौर पर आप लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जनाब, अगर पहाड़पुर की बात करें, अच्छा डेरा में एक और सेल पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ वो है जनाब A1 कॉस्मेटिक, वहां पर भी यही सीन है, टी ट्री हमारा फेस वॉश बहुत ज्यादा चलता है वहां पर, लवली फेस वॉश बहुत चलता है, इसी के साथ साथ वो भी स्प्रे मंगवाते हैं, और गुलशन कैश एंड कैरी, ठीक है जनाब, या फिर अमान हारसेरा एंड फारूक हारसेरा, ये वो स्पॉट्स हैं जहां पर लोग जा रहे हैं और गर्मियों के लिए जनाब न सिर्फ फेस वॉश खरीद रहे हैं बल्कि फेस वॉश के साथ ब्यूटी स्प्रे, ब्यूटी स्प्रे आपकी स्किन को जितना प्यारा बनाता है आफ्टर क्लिनजिंग, आफ्टर क्लिनजिंग जब आप फेस वॉश से चेहरा धोते हैं और उसके बाद स्किन टोनर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर उस फेस वॉश की कारकर्दगी, ठीक है जनाब, उसका ग्लो कई गुना बढ़ जाता है और आपकी स्किन जो है डे टाइम में सूर्य की शुआओं से महफूज रहती है। ठीक है जनाब, ये तो थे डेरा के लोग। अब पहाड़पुर में कौन कौन हमें फॉलो कर रहा है, तो मैं उन दुकानदारों के नाम उठाऊंगा जहां पर हमारा ये प्रोडक्ट इस तरीके से जा रही है, जैसे कि टॉप के ऊपर है फ्रेंड्स एंड फैमिली शॉपिंग सेंटर, ठीक है, उनका जब भी ऑर्डर आता है तो लवली फेस वॉश और गो पिंपल फेस वॉश के साथ उतना ही ब्यूटी स्प्रे जा रहा होता है। इट्स मीन कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सारे के सारे हमारे स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, स्प्रे फेस वॉश के साथ स्प्रे को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा और कौन है जी, इसके अलावा जो है नवीद जनरल स्टोर यहाँ पर भी, और इसके अलावा जो है हसीब जनरल स्टोर, ठीक है ना, हसीब एंड उसके साथ जमील नियाजी, क्योंकि इन दिनों में हमें इन दुकानों से जितने भी ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं माशाल्लाह वो सब सिर्फ फेस वॉश नहीं मंगवा रहे, साथ में ब्यूटी स्प्रे भी मंगवा रहे हैं। तो इन सब लोगों का बेहद शुक्रिया कि इन लोगों को समझ आ गई है कि भाई फेस वॉश के साथ
स्किन टोनर का इस्तेमाल स्पेशली गर्मियों में कितना जरूरी है। सर्दियों में भी जरूरी है लेकिन गर्मी में तो हद हो जाती है, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केसर का जो स्किन टोनर है वो विटामिन सी के ऊपर मुश्तमिल है और वो आपको एज ए नेचुरल सनब्लॉक का काम करता है, सनस्क्रीन का काम करता है और सूर्य की शुआएं आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती। आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ ये फेस वॉश नहीं बल्कि इसके बाद जो दूसरा हमारा फेस वॉश है जिसको क्या नाम हमने दिया है जी जनाब, जिस फेस वॉश का नाम है जो कि बहुत ही प्यारा फेस वॉश है और उसका नाम है केसन गो पिंपल फेस वॉश।

0: सन गो पिंपल एंटी एक्ने फेस वॉश एंड सोप।
1: अच्छा जी, एक बात मैं आपको बताऊं कि टी ट्री जो है ना वो ट्रेंडिंग चीज है। इससे पहले नीम को बहुत ज्यादा एक्ने के लिए, दानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था ऑयल कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इस वक्त इस दौर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना एक्ने के लिए वो टी ट्री है। ठीक है जनाब, तो लेकिन टी ट्री एक महंगा ऑयल है। ठीक है जनाब, एंटीसेप्टिक खसूसियात ये रखता है, एंटी बैक्टीरियल खसूसियात रखता है, एंटी फंगल खसूसियात रखता है, यानी कि ये जरासीमों को मुकम्मल तौर पर किल करता है और आपकी स्किन जब इन्फेक्शन से क्लियर होती है तभी जाके ये पिंपल्स खत्म होते हैं। तो जनाब, लेकिन अगर आप मार्केट में जाएं, ठीक है जनाब, आप हमारे गो पिंपल का मवाजना कभी भी नीम वाले फेस वॉश के साथ मत किया करें। ठीक है जनाब, एक बात मेरी तवज्जो से सुन लें टांक वालों, ठीक है जनाब, डेर इस्माइल खान वालों और पहाड़पुर वालों, कभी भी केसन के गो पिंपल को ये मत समझा करें कि भाई ये जो है ये सिर्फ नीम वाला फेस वॉश है। नहीं, ये आप अगर नीम वाले के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो नीम वाला फेस वॉश 250 रुपए का 300 रुपए का होता है। ठीक है जनाब, अगर हम ये सिर्फ नीम वाला फेस वॉश बनाते ना गो पिंपल तो इसकी कीमत 250 रुपए होती या ज्यादा से ज्यादा इसकी कीमत 300 रुपए होती। लेकिन इसके साथ चूंकि सैलिसिलिक एसिड है, नियासिनमाइड है और टी ट्री है तो जनाब ये महंगा है। लेकिन इस वक्त मार्केट में टी ट्री जो फेस वॉश है टी ट्री वाले कोई भी 700 रुपए से कम नहीं है। 700 रुपए, 600 रुपए, 650 रुपए से कोई किसी भी कंपनी का, या फिर अगर बहुत कम होगा तो 500 तक होगा। यानी कि जो टी ट्री का फेस वॉश, जब भी आप केसन का गो पिंपल खरीदें तो कंपैरिजन किया करें, कभी नीम वाले के साथ कंपैरिजन मत किया करें हमारे फेस वॉश का, उस फेस वॉश के साथ कंपैरिजन करें जिसके अंदर टी ट्री है, सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है जनाब, फिर आपको पता चलेगा कि केसन वाले आपको कितना फायदा पहुंचा रहे हैं। तो टी ट्री में ये सबसे अफोर्डेबल प्राइस में है, जो टी ट्री के फेस वॉश है उसमें सबसे अफोर्डेबल जो प्राइस में है वो केसन का गो पिंपल फेस वॉश है। तो भाई ये बहुत ही प्यारा फेस वॉश है, बहुत ही प्यारा, और ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसकी आपकी बे इंतहा खूबियां नजर आएंगी। लोग हमारे इस फेस वॉश

0: जी जनाब, चाय के एक कप के साथ, और ये मेरा पहला सीन।
1: हाँ जी,
0: तो जनाब साफ स्किन का राज अगर आपको भी चाहिए तो भाई केसन के पास है ये दो फेस वॉश, जो कि गर्मी में आपकी स्किन को इतना प्यारा, इतना जबरदस्त रख सकते हैं कि लोग पूछेंगे भाई ये अगर 3 महीने बाद किसी ने आपको देखा, अगर आप टांक में भी हैं, गर्म तरीन इलाके में भी, तो लोग पूछेंगे भाई स्किन इतनी प्यारी है, नारान कगान घूम के तो नहीं आए हो, है जनाब, वहां पर छुट्टियां तो गुजार के नहीं आए हो। तो अगर ऐसा ही कॉम्प्लीमेंट आपको चाहिए तो भाई केसन के ये दो फेस वॉश अपने पास रखिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है, पिंपल्स का मसला रहता है, तो गो पिंपल यूज करेंगे, ठीक है जनाब। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, सेंसिटिव है, टू टाइप है, जिस तरह की भी है, तो आप केसन का प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे। दोनों की कीमत 400 रुपए है। केसन शॉप पर जब आप आते हैं तो आपको ये 350 रुपए में मिलता है। इसी तरीके से मंसूर जनरल स्टोर पर जाएंगे तो वहां पर भी 350 का आपको मिलेगा। बहुत सारे दुकानदार आपको 350 रुपए में दे रहे होते हैं, अगर आप उन्हें कहें तो वो आपको दे देंगे, क्योंकि रियायत करने वाले बहुत सारे लोग हैं, फिक्स रेट के ऊपर बहुत सारे दुकानदार नहीं रखते, तो उनका बेहद शुक्रिया दुकानदारों का, जो हमारे कस्टमर को रिलीफ।

0: सन गो पिंपल एंटी एक्ने फेस वॉश एंड सोप।
1: अच्छा जी, ये एक्ने के लोग अगर आप चाहें तो इसमें हमारा सोप भी मौजूद है। ठीक है जनाब, कल हमारे पास कौन एक बंदा आया हुआ था, अच्छा ग्लोबल एफएम 91 वाले जानते हैं, यासिर मुगल। यासिर, तो यासिर आया हुआ था स्पेशल, इतनी गर्मी में आया। तो मैंने कहा खैरियत भी, कल भी आप आए हुए थे, आज फिर इतनी गर्मी में। कहता है कल तो मैं अपने लिए मिल्की सोप लेने आया था, लेकिन आज जो है मैंने अपने रिश्तेदार को ना बखर में भेजना है गो पिंपल, और उसके दानों का इतना बड़ा मसला था कि आप यकीन करें मुझे यहाँ पर आपका ये 200 का साबन लेकर 300 रुपए ऊपर लगाकर ना उसे बखर भेजना पड़ता है। ठीक है, तो जब किसी चीज के अंदर रिजल्ट हो तो लोग उसकी कीमत से भी ज्यादा किराया बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बशर्ते कि उसके अंदर रिजल्ट होने चाहिए। तो भाई ऐसे लोग गर्मी के अंदर बहुत ज्यादा स्किन इन्फेक्शियस हो जाती है, गर्मी के अंदर बहुत ज्यादा स्किन जो है इन्फेक्शन में मुब्तला हो जाती है। तो भाई इस प्रोडक्ट को जरूर अपने पास रखें। वो जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, जितना आप ऑयल को कंट्रोल करेंगे उतनी आपकी स्किन गर्मियों के अंदर प्यारी रहेगी। तो जनाब कॉल कर रहे थे कुछ लोग, और इस वक्त आके हमें आप कॉल कर सकते हैं, आप लोगों के मैसेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन पहले आप लोगों की कॉल लेंगे। तो जनाब जिनको जल्दी लगी हुई थी अभी आए जनाब और कॉल करें 03449363366 पर।
0: Go Pimple Anti-Acne Face Wash and Soap.

0: केसन गो पिंपल एंटी एक्नी फेस वॉश एंड सोप।
1: जी जनाब, केसन गो पिंपल एंटी एक्नी फेस वॉश एंड सोप। और फर्स्ट कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं जनाब, उनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, सर नजर हसन आ चुके हैं हमारे साथ कच्ची काठगढ़ से। जनाब कैसे हैं मोहतरम? हाँ, शदीद तरीन गर्मी है और जो लोग सो गए तो फिर उठने को दिल भी नहीं करता ना। जी ऐसा होता है। आपने नींद पूरी कर ली वैसे? मैंने क्या, आपने नींद अपनी पूरी कर ली? आपकी नींद का वैसे चले जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं केसन के दो बहुत ही प्यारे प्रोडक्ट हैं, केसन लवली फेस वॉश और केसन गो पिंपल फेस वॉश। इनमें से मौका मिला है आपको किसी एक को इस्तेमाल करने का?

0: ग्लू टॉप पे। न करो सही। ओए होए होए होए होए। अच्छा एक मिनट सबर करो वा, तुसा थोड़ी देर सबर करो, मैं तुहारी आवाज ही वन वेंदी पे उसी लोगां दो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं गलत थी गया। बिल्कुल जनाब, तो हुन बिल्कुल तुहारी आवाज मेरे ख्याल है कि सारे दे सारे लोग सुन दे पे होसन। जी जनाब, और पहली कॉल जो है वो ऐसी चली गई और नजर हसन की आवाज किसी ने नहीं सुनी। ठीक है जनाब, और मुझे किसी ने बताया, मैं देखता हूँ पहले। ठीक है जनाब, किसने हमें बताया है? जी जनाब उम्मीद है, और ये जी जनाब, और नजर हसन की कॉल आई हुई थी जनाब, और कॉलर की आवाज नहीं थी, और किसने हमें बताया? हाँ जी, चलो मैं रेडियो स्टेशन को देखो ना, किसने हमें बताया, किसने हमें बताया और किसने नहीं बताया। चलो ठीक है, अच्छा जी अभी अभी आ गई है। ठीक है जी, अभी बिल्कुल ठीक है। असल से मैंने ना गलत सिस्टम कनेक्ट कर लिया था जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो जी
1: वालेकुम
0: जनाब, जनाब सईद रहमान मेरा आके जनाब, सईद रहमान जो है अच्छा जी अभी आएगी, अभी जो भी कॉल करेगा ना, वो जो गलती थी जो मुझसे हो गई थी वो मैंने पकड़ ली, और जो है टांग वाले, जो है टांग वाले एफएम वाले जो है ना, वो बहुत ही एक्टिव है, यकीन कीजिए टांग वाले जो है ना बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी, वालेकुम सलाम, राजा गफूर सही पंज करी कुल कि हाल
1: हेलो,
0: है सही जी, आवाज आनी पई है
1: जी
0: जी जनाब, हेलो ओके जी, अच्छा जी इनकी आवाज, चलो जी मैसेजेस को शामिल कर लेते हैं, या फिर साथ साथ में मैसेजेस को देखते हैं और आप लोग कॉल्स भी करते रहें, ताकि जिसकी आवाज लग जाए तो फिर जो है उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी कौन है हमारे साथ, कौन है हमारे साथ, मैसेज है हमारे साथ, और मैंने एक उम्र, लेकिन उससे पहले जनाब सईद रहमान फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम
1: हेलो, हेलो,
0: जी, हेलो
1: आवाज नहीं आ रही खलील भाई?
0: भाई, आवाज आनी पई तुम्हारी, बिल्कुल सही आवाज आनी पई, मेरी आवाज नहीं आनी तुम्हारो?
1: किमे हाल है?
0: ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है, मेरी आवाज तो को रेडियो तो नहीं सुनी दी पई? ओके जनाब ये कॉल ड्रॉप हो गई है, सईद रहमान हमारे साथ मौजूद थे और इनका ताल्लुक कहाँ से है जी जनाब, कोट दौलत से हमारे साथ होते हैं।
2: पिंपल्स का सिफाया दो।
0: जी जनाब एक दफा फिर से राजा गफूर हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, वालेकुम सलाम मोहतरम। नहीं सही, मेरी आवाज तो बिल्कुल सही वैनी पे, हूँ आवाज नहीं नहीं पीटर तो नहीं चलना चाहिए था।
1: हेलो
0: जी आवाज नहीं आनी पे सही? अच्छा चलो फिर,
1: हेलो
0: चलो चलो जनाब, शोर है इनकी तरफ बहुत ज्यादा। चलो आप लोगों के पहले एसएमएस देख लेते हैं, और एसएमएस के बाद जो है फिर आपको मौका देंगे। अच्छा राजा गफूर हमारे साथ मौजूद थे, और आपको बताएं कि भाई ये पंजाब की जो साइड है, ये जो इलाका है सारा के सारा, ये पंजगराई का इलाका, दरिया खान का, फलूर कोट का, तो हमारा सेल पॉइंट जो है राजा गफूर के पास है, वहां पर आप केसन के सारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। और इनके पास कुछ चीजें शॉर्ट थी जो कि हमारे पास भी शॉर्ट थी पहले, लेकिन अभी इनके पास सारे प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं भाई, जिनको हाजमा कंट्रोल सिरप चाहिए, जिनको शिफाय दर्द चाहिए, जिनको वेट कम पेट कम चाहिए, जिनको फेस वॉश चाहिए, जिनको क्रीमें चाहिए, ठीक है जनाब, सारी की सारी चीजें आपको राजा गफूर के पास जो मिलेंगी तो आप वहां से हासिल कर सकते हैं। और कहते हैं कि मैंने एक उम्र लगाई है खुद को तबाह करने में, अपनी हालत संवारूंगा तो मर जाऊंगा। सलाम भाई क्या हाल है? ठीक है जनाब, और शो आज भी बेस्ट है, आई एम यूजर ऑफ केसन, अल्लाह को जान देनी है। ठीक है जनाब, और भाई मैंने जारा परफ्यूम लिया है, बड़ी अच्छी और मिट्टी खुशबू है, और सच में अल्लाह को जान देनी है। अच्छा जी भाई, तो मुझसे ज्यादा जो है तकिया कराम इनका बन गया, अल्लाह को जान देनी है। अल्लाह को, यानी कि अल्लाह को जान देने का मकसद ये होता है कि अगला बंदा हल्फियन कह रहा है कि ये कितनी अच्छी गर्मियां हैं, तो भाई परफ्यूम जो है आज आई थिंक कल कुछ लोग आए थे, कल भी आए थे, उनको नहीं मिल सके, लेकिन कल से फिर से अवेलेबल होंगे। ठीक है जनाब, तो परफ्यूम गर्मी है चूंकि इसकी डिमांड भी बढ़ गई है, लेकिन कल से इंशाल्लाह जिन लोगों को आज नहीं मिले केसन शॉप के ऊपर, तो एक दो दिन में या कल चक्कर लगाएंगे तो, या शाम को भी चक्कर लगाएंगे तो भी आपको मिल जाएंगे। गर्मी में यूज करें, पसीने की स्मेल बहुत ज्यादा बुरी लगती है। तो जनाब छोटा सा हमारा 250 रुपए का परफ्यूम है, अकबर मर्दों के लिए, हजारा खवातीन के लिए है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहते हैं कि मैंने हजारा परफ्यूम लिया है, बड़ी अच्छी मिट्टी खुशबू है, सच में अल्लाह को जान देनी। सब लिसनर्स को मोहब्बत भरे सलाम, और खास पहाड़पुर वालों को प्यार से सलाम। रोनी फ्राम पहाड़पुर, जानते तो होंगे जी, जी ना बिल्कुल जी, जानते हैं आपको हम, क्यों नहीं जानते। अच्छा जी, और उसके बाद है, अस्सलाम वालेकुम सर, हैंड एंड फुट क्रीम आपकी कितने की है? ठीक है जनाब, ये अब्दुल्ला हैं, और अब्दुल्ला भाई टांग से हैं, इन्होंने पहले हमें कॉल की थी और SMS किया और कहा था कि सर मैं वेट कम पेट कम खरीदी है, जिसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। जो हैंड एंड फुट क्रीम है जनाब, हाथ पाओ को गोरा करने वाली क्रीम, 350 रुपए की क्रीम है, लेकिन लगाने का तरीका इसका बहुत मुख्तलिफ है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आम क्रीमों की तरह नहीं है कि जिस तरह आप वैसलीन की तरह या लोशन की तरह हाथों के ऊपर लगा लेते हैं, नहीं, इसको लेप लगाकर इसको अच्छे तरीके से आपने जज्ब कराना होता है। ठीक है जनाब, थोड़ा थोड़ा लेप, अगर जैसे चेहरे के ऊपर रात को रहता है ना लेप, उसी तरीके से अगर हाथों के ऊपर थोड़ा सा रहे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन लगाना इसको इसी तरीके से है। 350 रुपए की हमारी ये क्रीम है, 350 रुपए की। ठीक है जनाब, अब्दुल्ला टांग से पता कर रहे थे, तो आप हासिल कर सकते हैं। टांग में हमारी प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल रही है कहाँ पर, वैसे तो बहुत सारी दुकानों के ऊपर, बिलाल मार्केट में वसी नसीम जनरल स्टोर है, आप वहां पर जाएं, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। ठीक है जनाब, इसके अलावा अरबाब कॉस्मेटिक स्टोर सदाम प्लाजा में है, वहां पर मिल जाएंगी। उसके बिल्कुल सामने फ्रंट के ऊपर इमरान कॉस्मेटिक स्टोर जनरल स्टोर है, आपको वहां से मिल जाएंगी। ठीक है जनाब, इसके अलावा जो है डिफरेंट किस्म की जो बड़ी जितनी भी दुकानें हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट जाना चाहें तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जो कि मंसूर जनरल स्टोर है, और ये है सदाम प्लाजा के अंदर, आप वहां पर भी हमारी प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं और उन्हें मौका देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मास्टर साहब क्या हाल हैं?
3: आपकी आवाज नहीं आ रही भाई,
0: आवाज अभी आ रही है, चेक करें। जी वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है?
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी जनाब, मुझे तो आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है मोहतरम।
3: अस्सलाम वालेकुम,
0: हेलो। अच्छा जी, ये भाई बताएं, ड्यूटी ऑफिसर दोनों की आवाजें आ रही हैं या सुनने वालों को कोई प्रॉब्लम है? जी वाई दी स्कूल वेरी आज

0: जनाब, आज हम बात कर रहे हैं केसन के फेस वॉशेस की। और केसन के दो तरह के फेस वॉश, वैसे तो चार किस्म के फेस वॉश हैं, लेकिन आज हम दो और की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दो की बात कर रहे हैं जो कि बहुत डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा लोग इनको पसंद करते हैं और काफी अरसे से इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद है डेर इस्माइल खान में हमारी एक यूजर होती थी आयत, ठीक है जनाब, वो एक पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ाती हैं, पढ़ाती थी, अभी पता नहीं पढ़ाती हैं कि नहीं पढ़ाती। तो मुझे याद है कि एक दफा उन्होंने एक महीने के अंदर ना हमसे 50 गो पिंपल फेस वॉश मंगवाए थे, 50 गो पिंपल फेस वॉश। और जब मैंने उनसे पूछा था कि आप कितने ज्यादा कूपन बने हैं, 1000 फेस वॉश गो पिंपल गया, तो कह रहे थे कि भाई पहली तो बात है आप इसका नाम चेंज करें गो पिंपल का। मैंने कहा क्या नाम रखें, तो उन्होंने कहा था कोई व्हाइटनिंग वगैरह रखें, ये तो व्हाइटनिंग इतनी अमेजिंग देता है कि मैं जितने भी आपसे मंगवाए हैं ना, उसमें से 15 लोग होंगे जिन्होंने पिंपल के लिए यूज किया और 35 लोगों ने तो व्हाइटनिंग के लिए इसे यूज किया, क्योंकि जिन लोगों ने पहले यूज किया पिंपल्स के लिए लिया था तो दाने तो खत्म हो गए, लेकिन व्हाइटनिंग इतनी जबरदस्त आ गई कि दूसरों ने, उनको पिंपल्स नहीं थे, उनको दाने नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस रिजल्ट को देखते हुए ना ये चीज मंगवाई है। तो भाई ये दोनों प्रोडक्ट किसन की, तो वैसे हर एक प्रोडक्ट लाजवाब है, बाकमाल है, क्योंकि हम इतनी प्यार और मोहब्बत से बनाते हैं, खालिस अज़ा से बनी हुई चीजें होती हैं, यही वजह है कि आपको बहुत कम वक्त में रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये दो प्रोडक्ट कमाल की हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ओकेटीए भाई, आपका शो बेस्ट है। ग्लूटा वाइट क्रीम लाजवाब है सर जी, मैंने बहुत इलाज करवाया था अपने चेहरे का, क्योंकि मेरा चेहरा जलता था, रेडनेस इतनी होती थी कि आंखों से पानी आता था। ग्लूटा वाइट से मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया है और मैंने सारी दवाई छोड़ दी है। आपकी शुक्रगुजार हूं जो आपने केसन की ग्लूटा वाइट क्रीम, आपने ग्लूटा वाइट क्रीम नाम बताया था इरम शहजादी। अच्छा, इन्होंने, अगर मैं इनके मैसेजेस देखूं तो शायद चैट में कहीं पर पढ़ा हो कि इन्होंने कहा था कि मेरे चेहरे का मसला है और मैं क्या यूज करूं। तो अक्सर हम आप लोगों को बताते हैं केसन की दो ब्यूटी क्रीमें हैं, ठीक है जनाब, एक सिर्फ नाइट क्रीम है और एक डे एंड नाइट है। जो नाइट क्रीम है वो जाफरानी फार्मूला क्रीम है, ठीक है जनाब, और जो डे एंड नाइट है वो ग्लूटा वाइट क्रीम है। और हमने इसको कैटेगराइज किया है, कैटेगराइज इस तरह किया हुआ है हमने इसको, कि हम कहते हैं कि जो शादीशुदा खवातीन है, जिनकी उम्र ज्यादा है और जिनकी छाइयां बहुत ही ज्यादा है, या जो बहुत सारी फार्मूला क्रीमें लगा चुकी हैं, ठीक है जनाब, जो बहुत सारी फार्मूला क्रीमें लगा चुकी हैं, उनकी स्किन आधी हो चुकी है, या फिर उनको बिल्कुल नाइट क्रीम के अलावा आराम ही नहीं आता, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि वो हमारी जो केसन जाफरानी क्रीम है ना, ब्यूटी क्रीम, वो इस्तेमाल करें। लेकिन जो कम उम्र की लड़कियां हैं, जैसे कि 16-17 साल की लड़कियां, 15 साल की लड़कियां, या जिनको अपने कलर को फेयर करने का शौक होता है कि जवान हो गई हैं लेकिन कलर सांवला सा है, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ ग्लूटा वाइट क्रीम। ग्लूटा वाइट बहुत ही सेफ फार्मूला है, टू मच सेफ फार्मूला मैं ये कहूंगा कि कम में जो लड़कियां हैं वो हमारा केसन ग्लूटा वाइट क्रीम, मैं किसी और ग्लूटा वाइट की बात नहीं कर रहा, केसन की जो ग्लूटा वाइट डे एंड नाइट क्रीम है जो 350 रुपए की मिलती है, आप उन्हें इस्तेमाल करें और फिर अपने रंग को फेयर होता हुआ देखें। जैसे कि इरम शहजादी जो है कह रही, इनका मैसेज बहुत ही काम का है, तो मैं इसे एक दफा फिर से पढ़ूंगा, और कहते हैं कि भाई आपका शो बेस्ट है, ग्लूटा वाइट क्रीम लाजवाब है और मैंने बहुत इलाज करवाया था अपने चेहरे का, क्योंकि मेरा चेहरा जलता था, रेडनेस इतनी ज्यादा होती थी कि प्रॉब्लम होती थी, आंखों से पानी आता था, ग्लूटा क्रीम से मेरा ये चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया है और मैंने सारी दवाइयां छोड़ दी हैं। तो ये भाई इरम शहजादी हमारी बहन, हमारी यूजर, जिन्होंने केसन की प्रोडक्ट को यूज किया है और ग्लूटा वाइट को यूज किया है, और कम एज उम्र ही होगी इनके, मैं इनको जानता नहीं क्योंकि मेरी फूफो की बेटी तो है नहीं, एन जनाब अगर होती तो फिर मुझे पता होता कि इनकी कितनी उम्र है, तो मुझे लगा ऐसा रहा कि कम एज है, और कम एज के जितने लोग हैं भाई वो ग्लूटा वाइट क्रीम के साथ, इन्होंने सिर्फ क्रीम लगाई है ना, तो इसके साथ ग्लूटा वाइट का अगर फेस वॉश लेती आप, या ग्लूटा वाइट का सोप लेती, क्योंकि ग्लूटा वाइट की केसन के पास फुल रेंज है, ठीक है जनाब। केसन वो वाहिद कंपनी है इस वक्त कि जिसके पास ग्लूटा के तीनों प्रोडक्ट हैं, साबुन भी है ग्लूटा का फेस वॉश भी है और ग्लूटा की क्रीम भी है, और क्रीम भी डे एंड नाइट क्रीम और अफोर्डेबल प्राइस में मौजूद है हमारी ये क्रीम, ठीक है जनाब। और एक आज हमें जनाब एक फीडबैक आया हुआ लिसनर्स का, और सलाम खलील आला, हम चश्मा रोड से चंदा सितारा सूरज और सियारा हैं, शो सुन के मजा आ गया। अच्छा जी, ये मैसेज सुनकर बहुत सारे लोगों को मजा आ गया होगा, है जनाब। ये हमारे यूजर हैं, लिसनर हैं और कोकार में होते हैं, ये बहने हैं जनाब। और नाम एकदम फिर से सुनिए, कि टांक वाले भी हंस रहे होंगे, पहाड़पुर वाले भी हंस रहे होंगे, डेरा वालों को पता है क्योंकि ये हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं। और इनका नाम है जनाब चंदा, सितारा, सूरज और सियारा। ठीक है जनाब, यानी कि दो भाई हैं, सूरज और सियारा, और चंदा और सितारा, ये दोनों बहने हैं आपस में, तो क्या ही बेहतरीन नाम है। ठीक है जनाब, और अब हम ये नहीं पूछेंगे कि जनाब कहीं आपकी वालदा का नाम क्या किशान तो नहीं है जी? क्या किशान तो नहीं है, क्योंकि ये तो सारे गैलेक्सीज के आर्टिकल है ना, चंदा सितारा सूरज और सियारा, यानी क्या किशान हो या जो भी हो।
1: ऐसा निखार।
0: बहुत शुक्रिया जनाब, अमीर हुसैन कोट वलीदात से हमारे साथ मौजूद हैं, और उस दिन इन्होंने कॉल की थी हमें और कहा था कि बैठे बैठे मेरा पेट बढ़ गया है। तो भाई बिल्कुल, केसन की जो वेट कम पेट कम फकी है, जो कि बहुत ही कामयाब फकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके बहुत सारे फायदे जो है आप लोगों को मिल रहे हैं जनाब। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है और उनको हम मौका दे रहे हैं इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो
2: हेलो
0: जी, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम जनाब, आवाज आ रही है आप तक? मैंने क्या, आवाज आ रही है आप तक?
2: हेलो,
0: आवाज नहीं आ रही क्या? चलो जी, आज कॉल्स का हमारे साथ इशू है, तो चलो जी कॉलर्स को आज हम छोड़ते हैं, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होता है, फिर लोग डिस्टर्ब भी होते हैं बहुत ज्यादा कि मसला हल क्यों नहीं हो रहा। सो व्हाई दिस कॉल अवेरी यार, ये प्रॉब्लम ऐसा हमारे साथ हुआ क्यों है? वैसे तो मेरा सिस्टम वैसे होता है, उसमें कोई इशू होता नहीं है, लेकिन हो सकता है आज कहीं पर कोई ना कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से।
1: चेहरा चमके ऐसा निखार पाया केसन को
0: नजर हसन ने कॉल भी की और मैसेज भी आया हुआ है, कहते हैं कि डियर खलील भाई, सलाम टू ऑल लिसनर। आजकल हमारी फीमेल जो है, अच्छा जी, शिराज शाहानी की भी कॉल आ रही है, चलो जो उनको ट्राई करते हैं, देखते हैं जनाब उनकी आवाज हम सुन पाते हैं या नहीं। हेलो हेलो, चलो जी छोड़ते हैं आज कॉलर को, छोड़े जनाब। और कहते हैं कि आजकल जी लिसनर्स प्रोग्राम में मिसिंग है हमारी फीमेल लिसनर्स, आपकी केसन बेमिसाल है माशाल्लाह, खुदा पाक मजीद तरक्की अता फरमाए। जी जनाब, और हम फीमेल्स को अब जबरदस्ती नींद से उठा तो सकते नहीं जनाब, गर्मियों के दिन हैं तो बहुत सारे लोगों के असर लेट होते हैं। एनी हाउ जनाब, SMS कॉल्स का सिलसिला, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आज की जो हमारी कहानी आप लोगों के सामने है जनाब, अगेन जो हर रोज जो कहानी होती है वो वाइटनिंग की होती है, क्योंकि केसन तो कहानी जुल्फ और रुखसार की है। या तो हम आपके बालों की बात करते हैं, या तो हम आपके चेहरे की बात करते हैं, और ऐसे बात नहीं करते हैं, हमें आपका पता है कि आपके बालों के मसाले हैं, तो आपको केसन हेयर केयर जोड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, केसन ऑयल और शैम्पू को इस्तेमाल करना चाहिए। चेहरे के मसले हैं तो जैसे कि इरम शहजादी कह रही थी, उनका बहुत बड़ा मसला इतने अरसे से था, वो केसन जाफरानी क्रीम से हल हो गया है, केसन ग्लूटावाइट क्रीम से हल हो गया है। अच्छा, ये बहुत सारे अभी हम ना, यकीन कीजिए कि ये हमारी दो क्रीमें ऑलरेडी मौजूद हैं, एक जाफरानी क्रीम है, एक ग्लूटावाइट क्रीम है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम एक और जो क्रीम है वो भी आपको ट्राई करवाएं। ठीक है जनाब, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के लोगों को मुख्तलिफ किस्म की क्रीम जो है सूट करती हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको एक नई ब्यूटी क्रीम भी हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है जनाब, एक नए और ट्रेंडिंग जो है इंग्रेडिएंट के साथ, जिस तरह हमारी अब डिवाइड हो गए हैं लोग, यकीन कीजिए जो ब्यूटी क्रीम है ना हमारी, उसमें से जिन लोगों को ग्लूटा वाइट सूट कर गई है वो सिर्फ ग्लूटा वाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जनाब, अच्छा जी आप लोगों की कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास जो है प्रॉब्लम है कॉल्स लेने का, आपकी आवाज नहीं आ पाती, तो इस वजह से सॉरी, माजरत करूंगा जनाब, आपकी कॉल हम नहीं ले सकते। तो जनाब, किसी को ग्लूटा वाइट सूट कर गई है, तो बस उसने ग्लूटा वाइट को पकड़ लिया, केसन की ग्लूटा वाइट। ग्लूटा वाइट जो है ये बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड प्लस जो है, अच्छा जी आप कॉल कर रहे हैं बार बार, तो एक दफा फिर से ट्राई करते हैं, और एक दफा फिर से ट्राई करने के साथ ही अगर आपकी आवाज हम पहुंचा सकते हैं।
3: केसन गो पिंपल एंटी एक्ने।
0: अब तो कुछ बंदों को जाफरानी क्रीम इतनी सूट कर गई है कि वो कहते हैं बस यही मेरी आखिरी इच्छा है और आखिरी ख्वाहिश जाफरानी है। कुछ लोगों को ग्लूटा, तो ये मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है स्किन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, किसी की ड्राई स्किन, किसी की ऑयली स्किन, किसी की टू टाइप, किसी की नॉर्मल, किसी की स्किन, तो मुख्तलिफ किस्म के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ क्रीम स्किन के ऊपर ज्यादा सूट करते हैं। इसलिए मैं आपको कहता रहता हूँ कि हमारे जो 6-7 किस्म के सोप है ना, आप सबको ट्राई करें, ठीक है जनाब। कोई एक सोप आपको ऐसा लगेगा जो आपको लगेगा कि भाई ये तो केसन ने आपके लिए ही बनाया है। अब मैं आपको बताऊं, जब से हमने जाफरानी सोप बनाया है तो हमने क्या किया है, हमने उपटन सोप बनाना छोड़ दिया है, क्योंकि तकरीबन जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हल्दी, संदल और जाफरान ये उपटन सोप के अंदर भी होते हैं और ये जाफरानी सोप के अंदर भी मौजूद है, तो हमने उसको बनाना छोड़ दिया। लेकिन आप यकीन करेंगे कि हमें लोगों ने इतना तंग किया हुआ है, जिन लोगों को भाई उपटन ने सूट किया है ना, वो कहते नहीं हमें उपटन चाहिए, नहीं हमें उपटन चाहिए, नहीं हमें उपटन चाहिए। हम उनको 100 दफा कह चुके हैं कि भाई जो जाफरानी साबन है और जो उपटन है फार्मूला तकरीबन सेम है, लेकिन वो कहते नहीं और हमें उपटन ने जो रिजल्ट दिए हैं हम चेंज ही नहीं करना चाहते। इसी वजह से जनाब मैंने अभी प्रोडक्शन को ऑर्डर दिया है कि उपटन सोप को फिर से बनाए भाई, लोग नहीं या तो बना के देते नहीं पहले, ठीक है जनाब। अब जब बना के दे दिया है तो अब भाई लोगों को जब इसके ऊपर नशा लगवा दिया है तो अब बंद ना करें, ठीक है जनाब। तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है प्रोडक्शन में, ठीक है जनाब, प्रोडक्शन में रिक्वेस्ट भेज दी है कि जल्द से जल्द उपटन की जो बैच है वो हमें दिया जाए, क्योंकि लोग मांग रहे हैं। जनाब एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आज मैंने आपसे कहा है कि कॉल ना करें, बार बार तंग करें, मसला है आज बात आप मेरी कभी तो सारी बातें मेरे सुन लिया करें। जनाब तो जो लोग आप देखें 7 साबुन में से एक हमारा थोड़ा कुछ अरसे के लिए हमने उसको बंद किया तो लोग हमारी जान नहीं छोड़ रहे कि नहीं उपटन सोप फिर से हमें दें, उपटन चाहिए, उपटन ने हमें बड़े अच्छे रिजल्ट दिए, उपटन ग्रेट है, उपटन जबरदस्त है। तो इसी तरीके से जनाब कोई भी प्रोडक्ट बनती है हमारी, वो किसी जब वैरायटी में चीजें मिलती हैं तो ये भाई हर कंपनी वैरायटियां नहीं बनाती है, ठीक है जनाब। हर कंपनी एक दो चीज बनाकर जान छुड़वा लेती है कि चलो जरा हर किसी को ये यूज कराएं। आप लोग ब्लेसिंग पीपल हैं कि भाई आप लोगों को केसन वैरायटियां देती है, इतने सारे कभी किसी सोचा है कभी आपने कि किसी कंपनी ने चेहरे के लिए 7 किस्म के साबुन बना के आपको दिए हो? कभी आपकी तारीख में कोई ऐसी कंपनी नहीं है आज तक जिसने अपने लिसनर्स के लिए, अपने यूजर के लिए इतना सोचा हो कि हर स्किन के लिए अलहदा से साबुन होना चाहिए। अब 7 किस्म के साबुन, मिल्की सोप, जाफरानी सोप, उपटन सोप, कोजिक एसिड सोप, ठीक है जनाब, गो पिंपल सोप, साथ में उसके जनाब राइस शाइन सोप और 7वें नंबर के ऊपर जो है केसन ग्लूटा वाइट सोप, यानी कि 7 किस्म के साबुन आज तक आपने नहीं सोचा होगा। और ये नहाने वाले साबुन नहीं है भाई, ये सिर्फ चेहरा धोने वाले साबुन है। केसन के जितने भी इसक साबुन मौजूद हैं वो बॉडी सोप्स नहीं है, वो हैंड सोप्स नहीं है, वो सिर्फ फेस सोप है, यानी कि आपके चेहरे के लिए हैं, क्योंकि इनके अंदर विटामिन होते हैं, इनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जब आप इनको अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये अपना असर छोड़ते हैं। तो ये साइज में छोटे होते हैं लेकिन बहुत काम के हैं। तो जनाब मैं आपको कहता हूँ कि हम ये सोच रहे थे कि चलो हम एक दो साबुन से जान छुड़वा कर एक दो साबुन के ऊपर 4 साबुन के ऊपर आ जाएं, लेकिन हमें लोग नहीं छोड़ रहे, कहते नहीं जो चीजें आप लोगों ने हमें दे दी हैं वो फॉरएवर देंगे। एक एग्जांपल दी है आपको उपटन साबुन की कि कुछ अरसे के लिए हमने नहीं बनाया तो लोग अब हमारे पीछे पड़े हुए हैं, अभी हमने उसका ऑर्डर दिया हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है केसन का जो उपटन साबुन है वो बन के आ जाएगा। जैसे कि वैसे आप यूज करें, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितने भी हमारे उपटन सोप के यूजर थे ना वो जाफरानी यूज कर ले भाई, वही इंग्रेडिएंट है जो उपटन के अंदर होते। उपटन के अंदर 2-3 चीजें ज्यादा होंगी, जैसे कि मुल्तानी मट्टी है वो उसके अंदर ज्यादा होती है, अरके गुलाब हो गया, ठीक है जनाब, ये उसके अंदर एक्स्ट्रा होगा, बाकी तो वही सारी चीजें वही हैं जो जाफरानी साबुन के अंदर मौजूद है।

जी जनाब, अननोन नंबर से हमें जनाब, अननोन नंबर क्या, उन्होंने नाम नहीं लिखा, वैसे तो सारे अननोन होते हैं, कहते हैं कि शो बेस्ट है भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जी। शो की तरह केसन के सारे प्रोडक्ट भी बहुत ही बेस्ट हैं, और स्पेशली जब हम गर्मियों की बात करते हैं और स्किन ग्लो की बात करते हैं, स्किन के रेडियंस की बात करते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर आपकी स्किन को कैसा दिखना चाहिए, तो अगर आप फीमेल हैं तो जनाब केसन का प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और एक ही दफा चेहरे को धोने से, एक ही दफा चेहरे को जब आप जो है वॉश करेंगे और उसके बाद चेहरा धोएंगे, तो आपको आपका चेहरा बताएगा कि आज आपके दिन की जो क्लिंजिंग है, जो सफाई हुई है, आपके पोर्स तक, आपके पोर्स के अंदर जो ब्लैक हेड्स, जो व्हाइट हेड्स मौजूद हैं, उनको निकाल कर फेंक देते हैं केसन के फेस वॉश। तो जनाब अपने आप को प्यारा बनाने के लिए, प्यारा रहने के लिए, नेचुरल ग्लो के लिए और पिंकिश ग्लो के लिए जनाब केसन के प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश का इंतखाब कीजिए, जो कि आपको 400 रुपए का मिलता है। और अगर आपको एक्नी का प्रॉब्लम है, एक्नी स्कार्स हैं आपके स्किन के ऊपर और अपनी स्किन को ऑयल फ्री करना चाहते हैं, तो जनाब केसन का गो पिंपल, नीम और टी ट्री का फेस वॉश इस्तेमाल कीजिएगा। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह निगेबान।

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
0: Eighty-eight point.

0: 88.4 Dark.
1: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल ले अवेलाजी सुनत अमल ले
2: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना डेर परेशान आयो और डेर गर्जिदली कड़ीदली डेर गर्जिदली कड़ीदली यो
1: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ मायूसके गई माँ अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े औ द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे
2: औ द नूरु मालूमातो दे पारा पदग नंबर कॉल कवले शे
1: 0319 55 23 404 अल शिफा दवाखाना शवाल मार्केट टांग पुकुम के ची मौजूद द्वी मौलाना हकीम नूरुल हुदा साहेब सहर अतो बजू नवाखला तरमाजीगर सलोरु बजू भोरे द मरीजा

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
3: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।

0: बाद में चेटंडी हो जाती है, बाद में चेटंडी हो जाती है, बाद में दीर हो जाती है, बाद में पुल मर जाते हैं, बाद में चेटंडी हो जाती है, बाद में दीर हो जाती है, बाद में पुल मुरझा जाते हैं, बाद में मौसम बदल जाते हैं, बाद में लोग बदल जाते हैं, बाद में हम समझदार हो जाते हैं, बाद में हम समझदार हो जाते हैं, बाद में लोग मर जाते हैं, बाद में दिल नहीं करता, बाद में सब्र आ जाता है, बाद में वो बात ही नहीं रेखती, ओके सी नेक्स्ट कॉलर ऑफ द शो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम नजमान भाई
0: जी, कुर्बान भाई
1: देर स्पेशल दावत दरखावा।
0: या अल्लाह खैर द खैर मारे के खैर गुजी द सदावत ते जी
1: देर द खुश देर अरमान दे ने कावल शेर अस्तु कुमार ता खुश ना रवा दे द अख्तर वाला खुश कला दे वता इल के पकोर शे देर ते शे द दे हफ्ते पर एक मित्र रे ग्रीनिंग द आज ना
0: हां हां
1: ये टूर पर एक दिन शल खैरियत ली
0: अच्छा तो खैर सर हां
1: इंशाल्लाह जमो पक्षल सर बराबर से
0: अच्छा और दर तो इस साल ला वेल दास के तो मा गड़े साल ला वेल दास
1: यो वायल ला वो बल दगा से पसा सर ले
0: अच्छा गोयाल ला वे और सर अब साल ला वे हां दबा मुंगे कम से तदर जो जजा उमर दूत तो मैं चल के तैयार है गनो
1: जोस मार्केट पे
0: दे हां वाओ बस बस बस वो रसीद भाई ने एकी दुकान के बना से तो बहुत शराड़े
1: ना ना ना ना इतना दास खाना के जो मेलमा के मेलमा ये वाते दरबी सख्शले का कोर का दिया है
0: शख्श
1: बाइन शख्शले इंतजाम और तकाई दिया दास खाना को खान मेलमा के वो रेना की जगह से दर्शे कर दिया
0: हाँ यानी अजी से सर बहुत गीक बदला हुआ था वो वर्जू हाँ अच्छा सही है बस जमजम वो भी हम रोड़ी के ना गुरी कजूरी मजूर भी हम रोड़ी और स्पिन जले जले टुपे भी हम रोड़ी भी क्या ना
1: और अर्थ से बरा और अभी जमजम वो खजूर बना और अभी ताकते भाई और
0: तरह
1: मस्त गई